जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

जय हिंद। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूं वास्तु कृष्णा और ये स्पेशल कार्यक्रम है। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे पुरखों की, यानी हमारे पितरों की। दोस्तों, 16 दिन के ये स्पेशल जो दिन होते हैं, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा होती है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यानी पितृ पक्ष को मनाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम भी ये बनते हैं। क्या होते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे।

0: प्रतीति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान, तैके कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पितृपक्ष में हमको याद रखनी चाहिए, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि श्राद्ध कर्म में बर्तनों का विशेष महत्व दिया गया है, बताया गया है। देखिए, अगर आपके पास बजट है या आपके पास है तो सोने चांदी और कांसे और तांबे के पात्र या बर्तन सबसे उत्तम माने गए हैं। आप इस प्रकार के बर्तनों में ही जो है अपने श्राद्ध का जो भोजन है या जो पूजन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका इनके लिए बजट है या आपके पास ये अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऐसे में आप लकड़ी से बने बर्तन, पत्तल या दोने, फिर उनका इस्तेमाल करें। केले के पत्ते पर बिल्कुल भी श्राद्ध निषिद्ध बताया गया, कभी भी आपको केले के पत्तों पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कोई अगर पुराने समय से मान्यता चली आ रही है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तर्पण में मिट्टी के बर्तनों का भी जो इस्तेमाल है पूरी तरह से वर्जित बताया जाता है। तो ऐसे में सबसे सिंपल और आसान तरीका है लोहे के या इस तरह के जो बर्तन होते हैं उनका कभी इस्तेमाल ना करें, या तो लकड़ी के बने या दोने होने चाहिए उनका इस्तेमाल आपको करना है, लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा किन चीजों का यूज करना है और किन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। श्राद्ध में पका हुआ या बिना पका हुआ अन्न अर्पित करके पितरों को तृप्त करने की परंपरा है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या सामान हो सकता है? गाय का दूध, उससे बनी हुई वस्तुएं, जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, आम, बेल, अनार, आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, बेर, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। वही याद रखिए, एक सबसे जो जरूरी बात है, कुछ अब ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पिंडदान में यानी कि इस वक्त श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं करनी है। उड़द होती है, मसूर, अरहर, गाजर, कई बार लोग गाजर का हलवा या गाजर से बनी चीज या अरहर की दाल बनी है घर में उसी से श्राद्ध भूज देते हैं। तो उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी गोल वाला जो होता है, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, उसको मृत्यु के समय पर इस्तेमाल किया जाता है। चना, मांस और अंडे इत्यादि का जो यूज है बिल्कुल वर्जित होता है, यह आपको श्राद्ध के समय पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। उसके बाद ब्राह्मण भोज की बात आपने कई बार सुनी होगी, अगर आपका बजट होता है तो आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। पर शास्त्रों में साफ साफ लिखा है ब्राह्मण भोज उसको कराना चाहिए, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो पात्र है अपात्र ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन पे आमंत्रित नहीं करना चाहिए। पात्र है, भूखा है, गरीब है, उसको आप करा सकते हैं। इसके अलावा तर्पण सभी पितरों को तृप्त करता है और ब्राह्मण भोज एक पितर को तृप्त करता है, इसीलिए पिंड दान के साथ साथ आप तर्पण पर भी ध्यान दीजिए। पीपल को और कौवे को प्रतीक माना जाता है पितरों का। मान्यता है कि अगर आप पीपल के नीचे दिया जलाते हैं या कोई को भोजन कराते हैं तो पितरों को तर्पण प्राप्त होता है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है सुप्रभातम। और आज के इसी स्पेशल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पितृ पक्षों के बारे में, यानी कि श्राद्ध पक्ष के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में श्राद्ध को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य से देखा जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं में हम इसे पितृ ऋण से मुक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम भी मानते हैं। जीव को उसके कर्मों के आधार पर सुख दुख और अनेक योनियों की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग और पाप कर्मों का फल नरक के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक के भोग के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। इसी कारण शास्त्रों में पुत्र पौत्र आदि के लिए दिवंगत माता पिता और अपने पूर्वजों के निमित्त होकर श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों के अनुसार कर्म करने का विधान बताया गया है, ताकि उन्हें परलोक यानी इस मृत्यु लोक के दूसरे लोक में जब वो मर जाते हैं या देह त्याग देते हैं, इस संसार को त्याग देते हैं, तो विधान बताया गया है ताकि उन्हें परलोक में या अन्य योनियों में भी सुख प्राप्त हो सके। सनातन धर्म में श्राद्ध को पितृ ऋण से मुक्ति पाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में श्राद्ध न करने से

होने वाले कष्टों का भी उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद जीव स्थूल शरीर छोड़कर, यानी ये जो हमारा शरीर होता है, इसे छोड़कर अपनी आगे की यात्रा करता है, और इस यात्रा में उसके लिए पाथेय यानी अन्न जल की आवश्यकता होती है, और ऐसा माना जाता है कि परिजन श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से जो अन्न जल अर्पित करते हैं, वही इस यात्रा में इन दिवंगत आत्माओं को मिलता है, प्राप्त होता है।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं पितृ पक्षों के बारे में। श्राद्ध चल रहे हैं, हर घर में हर परिवारों में श्राद्ध जरूर पूजे जाते हैं, आप भी करते होंगे। सबसे पहले आसान भाषा में हम समझ लेते हैं कि श्राद्ध होते क्या है। देखिए, गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है तो मरने के उपरांत, देह त्यागने के उपरांत जो एक दूसरी यात्रा शुरू होती है उसे पूरा करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें उस वैकुंठ की यात्रा पर कि हमको कौन सा लोक मिलेगा, मृत्यु के लोक में बनेंगे, प्रेत बनेंगे, पितर बनेंगे, भूत बनेंगे, ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें हमें पता चलती हैं। तो परिवार की ये जिम्मेदारी होती है कि न सिर्फ पिंडदान हो बल्कि अच्छी तरह से पूरे क्रियाकर्म को निभाते हुए श्राद्ध भी ठीक से मनाए जाने चाहिए। हर साल लगभग 16 दिनों तक ये स्पेशल दिन आते हैं जब हम अपने पितरों को पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो अब इस संसार में नहीं है, वो वापस आते हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और उनको भोग लगाने के लिए, जैसे हम कोए को भोग लगाते हैं, छत पे डालते हैं ना खाना, कुत्ते को, गाय को या गरीबों को, है ना, ये सब जो खिलाते हैं ये हम अपने पितरों के निमित्त होकर तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं या भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है जब हमारे पूर्वज वापस आकर यहाँ हमारे परिवारों को, बच्चों को अपने देखते हैं तो उनको हंसता खेलता देखकर और उनको याद करते हुए देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है और वो ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं और यही है श्राद्ध का असली महत्व।

पितृपक्ष चल रहे हैं। मैं हूं वास्तु कृष्णा, सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों, पितृ यानी कि जो हमारे पूर्वज है, जिन्हें हमें पूजना ही चाहिए। क्यों पूजना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार जो हम वंशज होते हैं ना, जो हमारे पूर्वज हैं, हम तो बच्चे हैं, वो थे, इसीलिए हमारा आज अस्तित्व है। हमारे होने से पहले न जाने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, किस तरह से अपने परिवार को लेकर वो आगे बढ़े, उन्होंने क्या क्या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए किया। कोई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गया तो किसी ने अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से जिया, लेकिन वो संसार को छोड़कर अब चले गए हैं। अब वो चले गए हैं तो गरुड़ पुराण हमें यह समझाती है कि हमें अपने पूर्वजों का तर्पण करने चाहिए या पिंडदान करना चाहिए, उनके नाम से भोग लगाना चाहिए, कुत्ते को, कोए को, गाय को या गरीबों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। गरुड़ पुराण कहती है कि जब भी कोई दिवंगत आत्मा गुजर जाता है तो उसके बच्चों को पिंडदान जरूर करना चाहिए। अगर किसी के बच्चे नहीं है तो परिवार में, खानदान में कोई ना कोई जरूर होगा, तो पिंडदान करना चाहिए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है या कह सकते हैं उनको शक्ति मिलती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि पितृ जो है बिगड़ गए हैं या पितृ दोष हो गया है, तो बेसिकली पितृ दोष कोई ऐसी चीज नहीं कि आपके जो पूर्वज या आपके पितृ हैं वो आपको कोई दोष दे रहे हैं या वो आपको परेशान करना चाहते हैं। इसका सही मायनों में अर्थ ये है कि अब वो कमजोर पड़ गए हैं या उनके पास शक्ति नहीं है। तो जब हम भगवान से पूजा करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे पूर्वजों को ये भोग हम जो चढ़ा रहे हैं उनको दे दीजिए, या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गायत्री पूजन करते हैं, है ना, सुना है ना आपने कि 1,25,000 गायत्री होती है, या हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं अपने पूर्वजों के लिए जो भी करते हैं, ऐसे करने से हमारे पूर्वजों को शक्ति मिलती है, और जब उनको शक्ति मिलती है तो वो ब्लेसिंग्स जो होती है वापस हम ही को देते हैं।

0: आप नहीं आओगे, पर मुझे विश्वास था आप आए बिना रह नहीं पाओगे।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती

0: रेडियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में। आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

क्या है पिंडदान की परंपरा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं वास्तु कृष्णा और आपका स्वागत करता हूं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान की परंपरा क्या है? मरने उपरांत पिंडदान की भी एक निर्धारित परंपरा बताई जाती है। इसमें शव यात्रा के दौरान 6 पिंड देने का विधान मिलता है। अगर आप किसी शव यात्रा में किसी के मरणोपरांत गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, वो 6 पिंड होते हैं जो साथ में रखकर अलग अलग स्थानों पर रखकर वापस रखे जाते हैं, है ना, और अंतिम संस्कार के समय पर भी रखा जाता है, वो पिंड होते हैं। इसका उद्देश्य भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं को प्रसन्नता और भूत पिशाचों से होने वाली बाधाओं का निवारण करने के लिए इस काम को किया जाता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको जरूर इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। इसके बाद दश गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के माध्यम से जीव को अतिवाहिक यानी सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। जब हमारा ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। इसके आगे पितृपक्ष में किए जाने वाले पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से अन्न जल अर्पित करने की परंपरा है। यदि पुत्र पौत्र या अन्य परिजन श्राद्ध आदि कर्म ना करें तो मृत जीव को भूख प्यास सहित अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे और जो लोग जो परिवार अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनको ठीक तरीके से पूजते हैं या उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके नाम से किसी गरीब को, भूखे को, गाय को, कुत्ते को

प्रथम पूज्य देवता भगवान गणपति, उनको विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना अधूरा माना जाता है।

नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं आजाद हिंद रेडियो एफएम सुभारती मेरठ। दोस्तों मुझे यहां पर पता चला कि टीवी की जो बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आज इस विषय में कि टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है। हमारे शहर में जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ्री दवाई भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि टीवी की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं रही, क्योंकि इसके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग सरकारी अस्पताल जाएं और इस बीमारी से लड़ें, छुटकारा पाएं, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग किसी को भी टीवी की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इसका इलाज फ्री करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। आजाद हिंद रेडियो सुभारती एफएम मेरठ। धन्यवाद।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद

दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है? और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत

0: होने दीजिए। कूलर, गमले छत पर पड़े हुए, पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई। और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार

अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार हैं, पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले, इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाइयां आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कही। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, परिवार, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं।

जी हाँ, सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती हैं। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई है। ये मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहाँ पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सा सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी, और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें, उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सही जानकारी दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो जीवन के कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कई, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा जरूरी है। विकास केवल लोगों की संख्या से नहीं होता, विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, बच्चे सुरक्षित और पोषित हों, महिलाओं को सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, पुरुष परिवार की जिम्मेदारी में बराबर भागीदारी निभाए, युवाओं को अपने भविष्य के लिए सही अवसर मिले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है जनसंख्या से। परिवार के प्रति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पति पत्नी परिवार से जुड़े फैसले मिलकर साथ में ले, बच्चे और उनके बीच का उचित अंतर रखना, कितने बच्चे होने चाहिए, किसी दूसरे के प्रेशर में आकर बच्चे पैदा नहीं करने, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई दादी नानी, कोई मोहल्ला, कोई पड़ोसी, कोई यार रिश्तेदार बोले कि नहीं बच्चे और पैदा करो तो ये बात ठीक नहीं है। इसका अधिकार केवल आपका है, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है, ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की, हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है। इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री कराती है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे, टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो मवाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में, कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत से ही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते और अपना इलाज पूरा करें।
0: जी,
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं। और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। और मैं फिर से आजाद।
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेहरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो, आरजीवंशी इन द स्टूडियो। हे हेलो, नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजीवंशी और लेकर हाजिर हूं आपके वाले प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखिया और संसार। 9:11 5 अक्टूबर आज की तारीख, और इसी के साथ आज है मंडे मॉर्निंग, इजंट इट। और इसी के साथ ना, जब भी कभी मंडे आता हूँ, माई गॉड, मेरा तो ऑफिस आने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, आना ज़रूरी, क्योंकि आपसे बात करना इज़ बहुत ज़रूरी, और आप लोगों की बातें सुनना भी, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलिए, आज का क्या है फॉर्मूला ऑफ द डे, ये भी ज़रूरी बात हो जाती है, इस पर बात कर लेते हैं। समुद्र में उठने वाली लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की जनाब कभी हार नहीं होती। इसलिए कंफर्ट जोन को छोड़िए, क्योंकि कंफर्ट जोन सबसे ज़्यादा रुकावट बनता है आपको सफलता हासिल करने में। जो ज़्यादातर लोग हैं, अपनी जानी पहचानी और सुरक्षित दिनचर्या में ही सिमट कर रह जाते हैं। जब तक कि आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम नहीं रखेंगे, तब तक दोस्तों आपको अपनी असली कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। जीवन में तरक्की और विकास हमेशा सीमाओं के पार जाकर ही मिलता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। वहीं जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो दो ही परिणाम हो सकते हैं इसके, या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर सीख। तो सफलता आपको आगे बढ़ाती है और असफलता आपको समझदार बनाती है, यानी कि दोनों ही कंडीशंस में आपके व्यक्तित्व का ही निर्माण होता है। तो घाटे का सौदा तो कोई सा भी नहीं है, इजंट इट। और सही समय का इंतज़ार करते रहने से बेहतर है कि आप अभी शुरुआत करें और समय को अपने अनुकूल बनाएं। जो ये प्रोकास्टिनेशन होता है ना, कि टालम टोल कर देना, कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, अभी अच्छा समय नहीं है, अभी अच्छा दशा नहीं है, इस चीज़ को छोड़िए, आज से अभी से शुरू कीजिए। और सपनों का ये जो टालम टोल वाला रवैया होता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन मैं इसको कहूंगी। इसी के साथ आप आज कोई एक ऐसा छोटा सा काम करें जिसे करने से आपको थोड़ा हिचकिचाहट या डर महसूस होता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना आप स्टार्ट कर सकते हैं, नया हुनर सीखना, या कोई नई कठिन निर्णय लेना। साथ ही साथ ये सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके बड़े सपनों को पूरा करने से रोक रही है, तो उस डर का सामना आपको करना होगा। इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और अपनी ऊर्जा को शिकायतों में बर्बाद करने के बजाय समाधान ढूंढने में लगाएं, ठीक है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह चलना तो पड़ेगा जनाब, और चलना सीखना पड़ेगा। फिलहाल चलिए ये गाना हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नमस्ते, मैं हूँ दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और फ्री में देता हूँ।
2: दोस्तों, आप यू ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों 9:27 हो गई हैं। As per my studio clock, दलाल मूवी का भी काफी बेहतरीन सा गाना हमने enjoy किया, गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब, 5 अक्टूबर आज के तारीख और इसी के साथ मंडे मॉर्निंग। चलिए आज की मॉर्निंग में क्या है खास बातें इस पर बात कर लेते हैं। अगर हम 1524 की बात करें तो गोंडवाना साम्राज्य की साहसी और पराक्रमी शासक रानी दुर्गावती का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने मुगलों को की विशाल सेना के खिलाफ डट करके मुकाबला किया और भारतीय स्वाभिमान के ये प्रतीक बन गई थी, तो इसीलिए आज वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 1524 में। वहीं 1676 की बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पहले आधिकारिक सिक्के यानी के रुपया या हम कहें पैसा ढालने की इजाजत दे दी थी, इसलिए भी ये दिन काफी याद करने योग्य हो जाता है। इसी के साथ 1805 की बात करें तो भारत में सिविल सेवाओं के जनक माने जाने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर यानी के उत्तर प्रदेश में निधन हो गया था। और 1854 में मैं आपको बताऊं पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे एक विनाशकारी चक्रवाती तूफान ने कोलकाता शहर को तबाह कर दिया था, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों की जान भी चली गई थी। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स तो आते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली नेपाल में जो हुआ, ओ माय गॉड, वो वाकई देखने लायक और ऐसा जिसको देखा ना जा सके, इज़न्ट इट। और इसी के साथ ही बता दूं आपको कि जस्टिस एम फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि न्यायाधीश बनी थी 1989 में। चलिए बहुत सारी बातें मेरे पास हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111।
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Well, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों 9:51 हो गए हैं, 5 अक्टूबर आज की तारीख है और इसी के साथ वी वर टॉकिंग अबाउट 5 अक्टूबर होने की, आज का इतिहास क्या कहता है, आज के दिन आखिर क्या खास बातें हो जाती हैं जो आप तक ज़रूर मुझे पहुंचानी चाहिए। चलिए आपको बता देती हूँ कि आज दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी 1989 में। तिब्बत के 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को शांति, अहिंसा और मानव अधिकारों के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। वहीं 1991 में रामनाथ गोयनका का निधन हो गया था। मैं आपको बता दूं ये कौन है, द इंडियन एक्सप्रेसवे समूह के संस्थापक ये रहे हैं और निर्भीक पत्रकारिता के ध्वजवाहक रामनाथ गोयनका ये रही हैं। आज के दिन इनका 1991 में निधन हो गया था। वहीं आज स्टीव जॉब्स का भी निधन हुआ था 2011 में। टेक्नोलॉजी जगत में क्रांति लाने वाली ये कंपनी एप्पल के सह संस्थापक और पूर्व CEO स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके साथ ही आपको बताऊँ कि आज के दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 1524 में। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ जो कि प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार रही हैं और कवि भी रही हैं, आज के दिन इनका जन्म हुआ था 1868 में। वहीं 1890 में किशोरी लाल मशरूवाला यानी कि जो प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं या मैं कहूँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। और वरिष्ठ तमिल अभिनेता, राजनीतिक व्यंग्यकार और संपादक चौधरी रामस्वामी का जन्म भी आज के दिन 1934 में हुआ था। और प्रसिद्ध पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट का जन्म भी 1964 में आज ही के दिन हुआ था। वैसे काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे आज आपको बतानी है, बाकी बताऊंगी आपको लेकिन धीरे धीरे, बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे ही बताऊंगी। फिलहाल आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं ऑन माई सेम नंबर 9639012111। फिलहाल हम ये गाना इन्जॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगा। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है,

0: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान, स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
5: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
5: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 10:11 हो गए हैं, 5 अक्टूबर आज की तारीख है और मंडे की आज मॉर्निंग है। इसी के साथ ढेर सारी बातें तो आपसे कर ही रही हूँ और मैंने आपको बताया कि आज का इतिहास क्यों हो जाता है खास। बाकी आज ना इसलिए भी खास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज है वर्ल्ड टीचर्स डे। यूनेस्को द्वारा दुनिया भर में समाज के निर्माण में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो आपको पता ही है, वो होता है 5 सितंबर को। आज के दिन नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भारत में हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सप्ताह मनाया जाता है। वहीं कई वर्षों में अक्टूबर के पहले सोमवार, जो कि अक्सर 5 अक्टूबर के आसपास पड़ता है, को विश्व आवास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज के दिन यानी के वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी के विश्व आवास दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इसी के साथ 5 अक्टूबर का दिन भारत में नारी सशक्तिकरण यानी के नारी रानी दुर्गावती और फातिमा बेबी से लेकर के वैश्विक स्तर पर तकनीकी क्रांति स्टीव जॉब्स की स्मृतियों को अपने साथ समेटे हुए है, इसलिए आज का दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। फिलहाल चांदनी मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को एंजॉय करेंगे। उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें, कहीं मचाइएगा दोस्तों।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999926127।
1: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 10:29 हो गई हैं और अभी हमने कितना प्यारा सा फाल्गुनी पाठक की वॉइस में गाना एंजॉय किया है ना। वेल वी वर टॉकिंग अबाउट 5 अक्टूबर के आज का दिन क्यों ही खास हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर दुनिया भर में शिक्षकों के योगदान की बात की जाती है, उनके अधिकारों, उनके जिम्मेदारियों और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको अंकित करने के लिए ये एक बड़ा अवसर माना जाता है। वहीं आपको बताऊं दोस्तों 1966 में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद से हम 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस मनाने लगे। हुआ क्या था, 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का एक विशेष अंतर सरकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें शिक्षकों की स्थिति से संबंधित सिफारिश यानी के रिकमेंडेशन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स को अपनाया गया था। और इस सिफारिश के अपनाए जाने की याद में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर 1994 को पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की थी। वहीं 1997 में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को, जो उन्होंने हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सनल की स्थिति को भी इसमें शामिल किया गया, इसलिए आज का दिन ये हम 1994 से मनाते आ रहे हैं। फिलहाल बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ और भी बातें हैं जो आज के दिन को डिपेक्ट करती हैं और विश्व शिक्षक दिवस के बारे में भी कुछ और बातें हैं खास, बताऊंगी आपको सारे के सारे। लेकिन पहले सुनेंगे ये गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
3: दोस्तों आप यू ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
4: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
5: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
7: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
8: हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।
5: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, RJ वंशी के साथ।

आजादी हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 10:46 हो गई हैं एंड आज क्योंकि 5 अक्टूबर तारीख है, इसी के बारे में बात आपसे कर रही हूँ कि आज विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है शिक्षकों के वेतन, कार्यस्थल के माहौल, सुरक्षा और पेशेवर स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना। वहीं योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के बिना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 यानी कि SDG 4 समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करना असंभव है। वहीं दुनिया भर में विशेषकर विकासशील और अविकसित देशों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए सरकारों को प्रेरित करना और युवाओं को शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में अध्यापकों के प्रति सम्मान जगाना, ये सभी शामिल है। वहीं ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज की बात करें तो यूनेस्को, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष और एजुकेशन इंटरनेशनल यानी EI वैश्विक शिक्षक संघों का परिसंघ जो है, ये सभी इसमें शामिल है। वहीं कुछ और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। मॉडर्न रेलिवेंस क्या है आज के दिन की, ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रही हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 11:14 हो गए हैं और दोस्तों हम ना बात कर रहे हैं आज ही के बारे में, यानी कि बातें हो रही हैं 5 अक्टूबर के बारे में। और आज विश्व भर में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। यस, आज है वर्ल्ड टीचर्स डे और इस पर हम बड़े लंबे समय से बात कर रहे हैं आपसे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर इसकी मॉडर्न रेलेवेंस की बात करें तो 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि डिजिटल लर्निंग और बदलते पाठ्यक्रम के दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है। विश्व शिक्षक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, एक शिक्षक का मार्गदर्शन, संवेदनशीलता और नैतिक नेतृत्व कभी कोई तकनीक प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती है, है ना। आपके क्या विचार हैं इस पर, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। बाकी हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा, आदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जॉन डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो के साथ विलेस डिकेस्ट्रो। आप सभी हमसे सहारनपुर से जुड़े हुए हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के नाम ये बहुत ही प्यारा सा गाना मैं लेकर आई हूँ, इस गाने को इन्जॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ, अपडेट करती हूँ आपको, आज के इतिहास के बारे में अपडेट करती हूँ कि आज आखिर ये दिन क्यों खास हो जाता है। दूसरी चीजें भी आपको बताती हूँ जो एसोसिएटेड होती हैं आपकी हेल्थ से, और साथ ही साथ हम बात करते हैं अपनी सखियों से, माताओं से, बहनों से कि आपकी जो गृहस्थी है उसको आप तरीके से संवार सकती हैं और संजो कर रख सकती हैं। कुछ छोटे छोटे से हैक्स आपके साथ साझा करती हूं और बताती हूं कुछ छोटी छोटी सी ऐसी तरकीब जिनको लगाकर आपकी जिंदगी थोड़ी सी और ज्यादा आसान आपको लगने लगेगी। अगर आपको भी कुछ बातें मुझसे साझा करनी है तो इसका बहुत ही आसान सा जरिया है, आपको कॉल या मैसेज कर देना होगा 9639012111 पर। और अगर आपका दिल चाहता है कि आपको ये गाना अभी सुनना है तो आप इसके लिए भी मुझसे फरमाइश के लिए भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी को विश करना है या फिर मेरे थ्रू किसी तक कोई बात पहुंचानी है तो भी आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी फ्रिक्वेंसी की पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि कहीं दूर ट्रेवल कर रहे हैं और हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसका भी समाधान हमारे पास है। आपको जाना होगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको सर्च करना होगा आजाद हिंद रेडियो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो कि बहुत ही आसान सा काम है, बच्चा तलक भी उसको इंस्टॉल कर सकता है और उससे आप हमसे बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी सारी की सारी बातें, कहानी या बाकी की चीजें भी हमसे साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमसे हमारे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट होना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी अपकमिंग शोज के बारे में जानकारी होती है या इन्फॉर्मेशन होती है या हम कुछ ऐसा स्पेशल अगर करने वाले हैं, कवरेज करने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में भी हम वहीं पर जानकारी साझा करते हैं। इसके लिए भी आप हमारे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप जा सकते हैं मेटा, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर। फिलहाल हम चलेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद आई बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
3: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
5: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
4: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आरजे वंशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और दोस्तों हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ, और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँच हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा होचला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली करनी होगी, जाना होगा स्टूडियो के बाहर, ताकि अगला प्रेजेंटर आए, अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और आपसे ढेर सारी बातें करे, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी चलते चलते कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना पीना जो है अपना सेहतमंद रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ पर कुछ गलत प्रभाव पड़े या आपके बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाएं, क्योंकि हम स्वाद स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिसका बाद में जो परिणाम होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप हुआ पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं, या प्योरीफायर का भी आप पानी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप हार्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगी आपसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी आपके इस अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकती है और दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। सतर्क होकर चलें और सुरक्षित होकर चलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही मस्त रहिए। फिलहाल जाते जाते छोड़कर जाऊंगी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं आपसे मिलूंगी कल इसी समय और इसी प्लेस पर और बहुत सारी बातों के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और यह ऋषि आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है, और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आगे भी सुनते जाइए आजाद।

0: 91.0 FM। हेलो वंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। स्पेशली आपका मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
1: आँखों में बात

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: है। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आरजे वंशी के साथ।
1: अम्मा मियाँ, पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
2: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
1: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
2: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
1: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
2: अरे जैसे कैंसर, कुमार, दमा रानी और टीबी।
3: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
4: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

हेलो मित्रों, नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम पहले

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आर्यवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आर्यवंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
1: आँखों में

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। के शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक

हारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में। जय हिंद।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors हिंदी, BA Honors English, MA हिंदी, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम

0: सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है आपका राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखने वाले परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको नारा देते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, पहले हमें अपने देश के प्रति सोचना है। सबसे प्रथम देश आना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा हम सभी के भीतर होना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों यही है कि हम सभी के भीतर देश के प्रति चेतना जागृत हो। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में, जैसे अहिंसा। गांधी जी ने कहा था
1: कि यदि आपके गाल पर कोई एक चांटा मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दे। वो दूसरे गाल पर भी चांटा मार दे तो उसके बाद पुनः पहला गाल उसके सामने कर दे। ऐसा आप तब तक करते रहें जब तक कि वो व्यक्ति थक न जाए। इसी सिद्धांत के कारण उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर की जा रही हिंसा का प्रतिकार करने के लिए या अपने को बचाने के लिए हिंसा के प्रयोग को सही नहीं माना। गांधी जी का ये उपदेश महात्माओं के लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठकर है, आम जन के लिए नहीं। सही उपदेश है कि आप अहिंसा का सम्यक प्रयोग ही करें, अन्यथा आपके अस्तित्व के लिए ये हितकर नहीं होगा। आत्मरक्षा के लिए अहिंसा के सिद्धांत को त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। तथागत बुद्ध की अहिंसा सम्यक अहिंसा है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी ओर से कोई हिंसक कार्यवाही न करें, परंतु आपको आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। यदि कोई आपके प्रति हिंसा करे तो आपको अपनी सुरक्षा हेतु जितनी भी हिंसा की आवश्यकता हो आप कर सकते हैं। इस सिद्धांत का पालन करते हुए ही उन्होंने भिक्षु संघ में सैनिकों का प्रवेश वर्जित कर दिया था। एवं एक समय विदुड़ब को भी कपिलवस्तु पर आक्रमण करने से नहीं रोका। कुछ बौद्ध शासकों के द्वारा तथागत बुद्ध की शिक्षा को सही नहीं समझकर अपनी सेना को अहिंसा का पाठ पढ़ाना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ।

इसमें मुख्य रूप से यदि सम्राट अशोक एवं सम्राट बृहद्रथ का इतिहास पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मूल मंत्र। वर्तमान में हमारा मूल मंत्र वो होना चाहिए जो सनातन रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा दिया गया था। देव शिवा वर मोहे ई है, शुभ कर्मन्ते कबू न टरो, न डरो असी सो जब जाए लड़ो, निश्चित कर अपनी जीत करो। उपयुक्त मंत्र का अर्थ होता है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वर दें मैं अच्छे काम करने से कभी पीछे न रहूं, मैं डरू नहीं, जब अपने शत्रु से लड़ूं तो मैं अपनी जीत सुनिश्चित करूं। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में। जय हिंद। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा देने वाले सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित ये पुस्तक राष्ट्र अनुभूति हमको सिखाती है कि सर्वप्रथम हमारा देश होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति किस प्रकार होनी चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं या इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो एक बच्चे को या एक मनुष्य को जीवन में जितने संस्कारों की जरूरत पड़ती है वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। आज हम बात करते हैं चरित्र के बारे में। चरित्र क्या है? किताब के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं, सद्विचारों और सत्कर्मों का संगम ही चरित्र है, जो हमारी इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। जो लोग प्राणी मात्र के प्रति अपने भीतर संभाव रखते हैं और कुशल कर्म करते हैं उन्हीं को चरित्रवान कहा जाता है। चरित्र मानव जीवन की स्थायी निधि है। जीवन की सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है और स्वयं के साथ समाज के लिए भी

उपयोगी बनता है। एक चरित्रवान व्यक्ति के लिए कुछ गुण बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे सम्मान। माता पिता और वरिष्ठ जनों का सम्मान कीजिए। विनम्रता, विनम्र एवं मृदुभाषी रहिए। आत्म संयम, गुस्सा, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। परोपकार, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहिए। दयालुता, निर्धनों और असहायों के प्रति करुणा का भाव रखिए। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। अपने भीतर संवेदना के स्तर को उच्च रखेंगे तो सभी की पीड़ा स्वपीड़ा अनुभव होगी और सहयोगात्मक सहानुभूति का जन्म होगा। दूसरे की परेशानी को खुद की परेशानी समझ पाएंगे। सत्य, सत्य की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। हमें सदा सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए और सत्यनिष्ठ व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक नैतिक मूल्यों पर व्यवहारिक सहमति भी सत्य का पालन करना है। सदा सत्य बोलिए और सत्य को स्वीकार कीजिए। अहिंसा, किसी को भी शारीरिक, वाचसिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न कीजिएगा। मितव्ययता, यानी सदैव सादे जीवन को ही अपनी जीवन शैली बनाए। प्रदर्शन के भाव हमें व्ययी बना देते हैं, जो उचित नहीं। अतः अनावश्यक व्यय न कीजिए, यानी दूसरों को दिखावे के चक्कर में अपनी जेब को हल्का न कीजिए। सत्यनिष्ठा, अपने कार्यों के प्रति सत्यनिष्ठा का भाव रखना चाहिए। आपके ओनर्स, आपके मैनेजर्स, आपके मालिक आपको देखें या ना देखें, आप अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा का भाव रखें, क्योंकि यही कार्य है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपके परिवार को पालता है और एक दिन आपको जीवन में तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाते हैं नैतिकता का भाव, सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ और सही कार्य करने की प्रतिबद्धता अपने भीतर विकसित कीजिए। दृढ़ता, कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों और लक्ष्यों पर टिके रहिए, यानी मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां क्यों ना हो, आपके जीवन के सिद्धांत और आपके लक्ष्य पर आपको टिके रहना है। समर्पण, अपने कार्य और जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और मेहनत से निभाइए। धैर्य, कठिन समय में शांत और स्थिर रहने की क्षमता विकसित कीजिए। आपकी प्रतिबद्धता, हम अपने जीवन, परिवार, समाज, देश और संपूर्ण मानवता के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यदि ये हमारे जीवन का संकल्प हो जाता है तो हम किसी के साथ भी अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: वास्तु कृष्ण के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: न्यू बोला रे एक बात तू बोल सकती।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम

0: विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आंख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ, लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञ से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: वास्तु कृष्ण के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: रोज हसरत

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: मेहरबानो रांधे के दिल में क्या क्या मलाल थे, रंग के बादल मंडरा रहे थे। तुझमें ये हमदम, तुझमें ये हमदम, अगर है दम तो दामन थाम ले। तुझमें ये हमदम, अगर है दम तो मेरा दामन थाम ले। है अगर हैरान तो ए नादान

0: गया, जख्म बन गया और क्या सोचने लगी, इन दौलत वालों के आगे पार नहीं बसाएगी। कहीं ताकत के पंजे में उसे ख्याल आ गया, कहीं ताकत के पंजे में कलाई बदनसीबों की, कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटियां गरीबों की, भरे हैं गम के आंसू और आंख में बह नहीं सकते, तुम्हारे सामने लुटते हैं और हम कह नहीं सकते, मेहरबानों क्या आलम था।
1: अरे चली बिछड़ के हीरे जब रांझे की याद आई, तन पटमल

0: ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता।
1: भगवान की भक्ति और शक्ति को जानिए।
2: जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई किसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का।
3: वास्तु कृष्णा के साथ हर सुबह दिन की शुरुआत जीवन को रूपांतरित कर देने वाली बातें सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भक्ति और भजन रोजाना सुनना ना भूलिए। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो सुभारती रेडियो।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ
4: रख विश्वास, तू है शिव का।

0: भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
1: बुद्धं शरणं गच्छामि।
0: अब सुनिए बुद्धवाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: तू अकेला भी है तो गम न कर, तेरे साथ वो है। पावर ऑफ हनुमान।
1: यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जया।
0: हर मंगलवार वास्तु कृष्णा के साथ सुबह 6 बजे से सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
1: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
2: जय श्री राम।
3: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।

0: अब सुनिए बुद्धवाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ।
1: हर दिन के पल को चेतना में जी, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो।
2: सुबह रती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धम शरणम गच्छामि।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: आज की मैं
8: के भाई
7: आज की मैं चूर

0: वास्तु कृष्ण के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
2: न्यू बोला रे एक बात तू बोल सत्य।

0: वास्तु कृष्णा के साथ
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम
2: पैते शर्मी हागी सारे के योग

0: वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हिंद वंदे मातरम, आपका स्वागत है। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। इसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। जी हाँ, विटामिन B12 सब जानते हैं इसको, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, क्यों होता है, कितना खतरनाक हो सकता है, आज के एपिसोड में यही जानकारी।

सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में मैं हूँ वास्तु कृष्ण आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जिसकी कमी कई बार शरीर में चुपचाप बढ़ती रहती है। शुरुआत में लगता है बस थोड़ी कमजोरी है, थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी हाथ पैरों में थोड़ी झंझनाहट या सुन्नपन होना, कभी चक्कर आना। हम कहते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई है, शायद काम ज्यादा हो गया था, शायद डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस हो गया है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इन छोटी छोटी परेशानियों के पीछे विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, याद रखिए। और B12 की कमी वाले को हल्के में बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेना, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ खून से नहीं होता बल्कि हमारे दिमाग और नसों के स्वास्थ्य से भी होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा B12 की कमी, कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव यानी इसका ट्रीटमेंट।

जी हाँ दोस्तों, यह सेहत सही लाभ गई वास्तु कृष्णा के साथ है आप सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। विटामिन B12 आखिर है क्या, इसकी कमी क्यों होती है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कमी कितने समय में सामने आती है,

0: इससे क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या खाना चाहिए और सबसे जरूरी इलाज कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। B12 हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, DNA बनाने में, नर्वस सिस्टम यानी हमारी नसों के सही कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर शरीर में एक तरह की एनीमिया हो सकती है, यानी समस्या सिर्फ एनीमिया तक नहीं रहती, कुछ लोगों में नसों से जुड़े लक्षण एनीमिया से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि B12 की कमी आखिर होती क्यों है? सबसे पहला कारण है खाने में पर्याप्त B12 न मिलना। B12 प्राकृतिक रूप से, मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और दूध दही जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में मिलता है। जो लोग लंबे समय तक पूरी तरह से शाकाहारी या वीगन भोजन लेते हैं उनमें B12 की कमी सामने नजर आने लगती है। दोस्तों, पुराने जमाने में याद होगा कि हम अपने खेत से कुछ मूली, गाजर ऐसे कर सीधा खा लिया करते थे, है ना? तब केमिकल इतने ज्यादा नहीं होते थे, कीटाणुओं से हम लोग इतना ज्यादा नहीं डरा करते थे। मिट्टी में B12 होता है दोस्तों, और मांसा जो हार होता है, जो मांस से जुड़ी जैसे अंडा, मछली या जो भी मीट वगैरह के ऐसे खाने के प्रोडक्ट होते हैं लोगों के, उनमें B12 इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग ना मिट्टी, घास ये सब ज्यादा खाते रहते और मिट्टी उस माध्यम से उनके अंदर चली जाती है, ऐसा माना जाता है। तो बात अब यह है, B12 की कमी सिर्फ कम B12 खाने से नहीं होती। कई बार व्यक्ति अच्छा खाना खा रहा होता लेकिन फिर भी शरीर B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कि हमारा जो शरीर है वो ठीक से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है, तब भी B12 की कमी हो सकती है। क्योंकि भोजन से B12 को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए पेट और आंत की एक पूरी प्रक्रिया की जरूरत होती है। पेट में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पेट या छोटी आंत से जुड़ी समस्या है, कुछ प्रकार की सर्जरी हुई है या शरीर B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो भोजन पर्याप्त होने के बावजूद भी ये कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से भी B12 एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिंस और मेटफॉर्मिन। इसका मतलब ये नहीं कि इन दवाओं को अपने आप बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसी दवा लेते हैं तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ भी B12 एब्जॉर्प्शन की समस्या ज्यादा देखी जा सकती है और कुछ लोगों में इसकी समस्या तब भी ज्यादा नजर आती है जिनका पेट अक्सर खराब रहता है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है, तब 100% आपके अंदर कमी आएगी B12 की। आगे इस बारे में और बात करेंगे।
1: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है मेरठ का नंबर 1 सो भारतीय आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में स्मार्ट एनजीओ की जो एक खास प्रस्तुति आप सुन रहे हैं। आज हम विटामिन B12 के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि विटामिन B12 काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगर आपके अंदर कमी आ जाए तब। दोस्तों अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लक्षण। आपको पता कैसे चलेगा कि B12 की कमी हो गई है हमारे शरीर में? लगातार थकान और कमजोरी होना, लेकिन इसके साथ कुछ और भी संकेत होंगे, क्योंकि थकान और कमजोरी तो कई मामलों में होती है। हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होना, कई बार आपको लगेगा कि आपका हाथ सो गया है, पैर सो गया है, झंझनाहट जैसा महसूस होगा, है ना। अगर ये होता है B12 की कमी है। चलने में संतुलन की समस्या, बैलेंस बनाने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी, आपकी पकड़ कमजोर हो जाना, है ना, आपको फील होगा कि अब उतनी ताकत नहीं रही शरीर में, जबकि मैं खाता पीता भी ठीक हूं, ऐसा फील होगा आपको। चक्कर भी कभी कभी आ सकते हैं, अचानक आप उठकर खड़े हो या बैठे हो तब अचानक आपको चक्कर आ सकता है। चलने में थोड़ी सी दूर चले, थोड़ा सा ही जीना चढ़ा, सांस फूल सकती है। दिल की धड़कन बहुत तेज कभी कभी महसूस हो सकती है। बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तब आपको अचानक से एकदम तेज दिल धड़कता हुआ महसूस हो सकता है। आपकी त्वचा पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जीभ में भी दर्द, तालीमा वैया हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, सबसे आसान उदाहरण आपको बताता हूं, याददाश्त। अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें भूल रहे हैं, ज्यादा भूल रहे हैं, लोगों के या जगहों के नाम भूल रहे हैं, तब याद रखिए, ध्यान रखने में परेशानी, किसी की बात को ध्यान से सुनने में परेशानी, अभी एक ही मिनट पहले कोई बात हुई और आप उसे भूल गए, आप जगह का नाम भूल गए, आप बात करते करते भूल गए, यकीन मानिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ये लक्षण है विटामिन B12 के बारे में। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि इन सभी लक्षणों से कभी ना कभी मैं भी दो चार हुआ था, तब मुझे भी पता चला कि ये B12 की कमी है। दोस्तों अगर याददाश्त में कमजोरी आ गई है, मतलब आपको याद नहीं रहता, 2 मिनट 5 मिनट पहली बात भूल गए, कमरे में घुसे किसी चीज को लेने के लिए और भूल गए क्यों आए थे, किसी से बात करते करते कोई बात भूल गए और बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रही है, लगातार कमजोरी होना, हाथ में, हाथ की किसी भी उंगली में, पैर में झंझनाहट, चींटियां चलने जैसा फील होना, चक्कर आना, उठकर अचानक से बैठे या बैठकर अचानक से उठे तब भी चक्कर आ जाना, और एकदम से आपको झंझनाहट महसूस होना पूरे शरीर में, ये लक्षण है विटामिन B12 की कमी के। कुछ लोगों के मूड में भी बदलाव आते हैं दोस्तों, भ्रम और सोचने समझने में भी परेशानी हो सकती है, भ्रमित हो जाते हैं कई बार। विटामिन B12 दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए ये सारी समस्याएं होती है। अगर हाथ पैर में लगातार झंझनाहट सुन्नपन हो रहा है तो इसे सिर्फ कमजोरी समझ के नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक B12 की कमी रहने पर हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये समस्याएं कई बार ऐसी बढ़ सकती हैं कि कभी ठीक भी ना हो पाए। दिमाग के अंदर अगर ये खराबी ज्यादा आ गई तो शायद फिर कभी इसे ठीक भी ना किया जा सके, इसीलिए इन लक्षणों के आधार पर तुरंत के तुरंत अपने B12 का इलाज करवाइए। लेकिन B12 की कमी कितने दिन में हो जाती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कि ये तो लक्षण है जो हमको नजर आ रहे हैं।

B12 ऐसा कोई विटामिन नहीं जिसकी कमी 2-4 दिन में नजर आनी शुरू हो जाए या 2-4 दिन में ही कमी आ गई है, तुरंत लक्षण दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं होता। विटामिन B12 काफी बड़ा भंडार जमा करके रखता है अपने शरीर में, जो हमारे शरीर में ना भंडार होता है, लेकिन ये कमी नजर आने हो गई है शुरू, लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तब समझ लो अंदर मामला खत्म हो चुका है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को आज B12 कम मिला तो जरूरी नहीं कि कल उसके हाथ पैर सुन हो गए होंगे या चक्कर आना शुरू हो जाएगा। B12 डेफिशिएंसी के लक्षण कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, यानी आज की परेशानी का कारण कई बार लंबे समय तक चल रही कमी हो सकती है।

जय हिंद वंदे मातरम, आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। अगर हाथ पैरों में लगातार झंझनाहट, सुनपन है, चक्कर आना है, याददाश्त कमजोर हो रही है तो समझ लीजिए B12 की कमी हो चुकी है। और ये कोई 2-4 दिन में नहीं होती, हमारा शरीर B12 का भंडार हमेशा जमा करके रखता है। लेकिन अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है या कोई और समस्या है तो ऐसे में B12 लगातार घटता चला जाता है और इसके लक्षण ही सालों साल बाद वापस आते हैं। और B12 की लगातार डेफिशिएंसी के कारण आपके दिमाग में कई प्रकार की कमियां आ सकती हैं, जैसे नींद ना आना, याददाश्त का कमजोर होना, आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है डॉक्टर्स के अनुसार। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ ये सोचकर कि मैं तो खाना खाता हूं, B12 की कमी भला कैसे हो सकती है, समस्या को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब सवाल है कौन सी जांच करानी है। अगर आपको लगता है लगातार थकान, कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट, जीभ में समस्या, याददाश्त या संतुलन से जुड़ी कोई परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह लेकर डॉक्टर के अनुसार जांच करवाइए। आमतौर पर शुरुआत में डॉक्टर CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट और सरनम विटामिन B12 की जांच करते हैं और CBC से हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं की स्थिति का पता चलता है। B12 डिफिशेंसी में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से ज्यादा बड़ी नजर आती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको इस लक्षण को या B12 की कमी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। डॉक्टर जो टेस्ट बोले वो करवाइए। पता चलने पर, कंफर्म होने पर आपको सबसे बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आपको खाना क्या है। एक तो डॉक्टर जो दवाइयां बताएंगे वो आप खाइएगा जरूर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो B12 के अच्छे प्राकृतिक स्रोत होते हैं मछली, मांस और अंडे। इसके अलावा दूध और डेयरी उत्पादों में भी B12 होता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो B12 फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, यानी जिन खाद्य पदार्थों में B12 मिलाया गया हो उनका उपयोग कीजिए। ऐसे खाद्य पदार्थों के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल जरूर देखें और पढ़ें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ भोजन से हर व्यक्ति की B12 डेफिशिएंसी ठीक हो जाए ये जरूरी नहीं। अगर कमी का कारण एब्जॉर्प्शन की समस्या है या कमी काफी ज्यादा है तो डॉक्टर सप्लीमेंट या इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। और अब दवा की बात करते हैं। बाजार में B12 की कई टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं, लेकिन मैं आपको यहां रेडियो पर बैठकर किसी दवा के बारे में नहीं बता सकता, इंजेक्शन के बारे में नहीं बता सकता। मैं आपसे बस ये बता सकता हूं कि अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बताएंगे कि आपके शरीर में कितनी कमी है और आपको किन दवाइयों, इंजेक्शनों, गोलियों या कैप्सूल की जरूरत है या सिर्फ ये खाने पीने से ठीक हो सकता है। किस लेवल का B12 कम है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको याददाश्त में लगातार कमजोरी, चक्कर आना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, लगातार कमजोरी होना, नींद की बहुत ज्यादा कमी होना, ये लक्षण है B12 की कमी के। और B12 लगातार कम होता चला गया तो इससे आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ये भयानक हो सकता है। दोस्तों, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये कोई मामूली खून की कमी नहीं होती, ये बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। सिर्फ B12 की कमी समझकर खुद से फोलिक एसिड शुरू मत कीजिएगा। डॉक्टर के बताए सुझाव पर ही दवाइयां और खाना पीना शुरू कीजिएगा। किन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोग जो लंबे समय से वेजिटेरियन या वीगन डाइट लेते हैं और B12 का पर्याप्त सोर्स उनके पास नहीं है, बुजुर्ग लोग जिन्हें पेट और आंत की समस्या रहती है, नौजवान लोग, लड़के लड़कियां भी, महिला पुरुष भी जिनका पेट कभी ठीक नहीं रहता, हर मामले में उनके अंदर भी B12 की कमी होगी क्योंकि आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है।

सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है और आज के कार्यक्रम में B12 की कमी के बारे में हमने बात की है। दोस्तों, मैंने आपको लक्षण बताए, उदाहरण बताए, शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके परिवार में भी किसी को ऐसा हो रहा है तो याद रखिये, ये कोई मामूली बीमारी नहीं, ये B12 की कमी है। हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चक्कर आना, थकान होना, जिनका पेट खराब रहता है उनके अंदर भी ये कमी होती है और दो दिन में पकड़ में आ जाए ऐसा भी नहीं होता है, सालों साल बाद तो लक्षण सामने आते हैं। इसीलिए आपको सप्लीमेंट, दवाइयां, कैप्सूल, गोली लेने पड़ सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, आप अंडा, मछली इत्यादि खा सकते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तब डॉक्टर के बताए अनुसार आप उन चीजों को जरूर खाएं, दवाइयां, गोलियां, कैप्सूल या इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं होता, स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर के संकेतों को समय से समझते रहना। तो आज का संदेश बिल्कुल साफ है, संतुलित भोजन लीजिए, लक्षणों को नजरअंदाज मत कीजिए, जरूरत हो तो CBC और विटामिन B12 जैसी जांच डॉक्टर की सलाह पर कराइए। बॉर्डरलाइन या संदिग्ध स्थिति में आगे की जांच डॉक्टर तय करेंगे कि भाई पकड़ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर कुछ और भी जांच आपको बता सकते हैं। और दवा या इंजेक्शन खुद से नहीं लेना, डॉक्टर के अनुसार ही लेना है। थकान को हमेशा किस्मत मत मानिए कि मैं तो हमेशा थका हुआ ही रहता हूं, किस्मत ही ऐसी हो गई है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। झंझनाहट को हमेशा उम्र का असर मत मानिएगा, मेरा तो हाथ पैर सो ही जाता है, उठता हूं बैठता हूं तो चक्कर आ ही जाता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल या कॉमन नहीं है दोस्तों। और कमजोरी को हमेशा काम का तनाव या डिप्रेशन या स्ट्रेस मत समझिए, कभी कभी शरीर बहुत धीरे से हमें एक संदेश दे रहा है, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा आपको सोचना चाहिए। उस संदेश को सुनिए, अपने शरीर की बात को समझिए, समय पर जांच कराइए और स्वस्थ रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका अपना वास्तु कृष्णा, चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, जागरूकता बीमारी से पहले की सुरक्षा है और समय पर जांच स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समझदारी। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये थी खास प्रस्तुति स्मार्ट एनजीओ की, सेहत से ही लाभ कई।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई, वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं इस खास कार्यक्रम को जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। ये तो मैं आपको कई बार पहले भी बता ही चुका हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति सिर्फ आपके अपने शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसी समस्या जिसे अक्सर लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही समस्या शरीर को अंदर से कमजोर कर सकती है। जी हाँ, खून की कमी यानी के एनीमिया। और सबसे जरूरी बात, एनीमिया सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, ये बच्चों को हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एनीमिया क्या है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। साथियों, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो एनीमिया या खून की कमी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बार बार थकान महसूस होना, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और काम करने में मन न लगना, चेहरा और त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर से मैं ये लक्षण आपको बता देता हूं। एनीमिया यानी खून की कमी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं, लगातार कमजोरी फील होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन अक्सर तेज महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आपका चेहरा अब दमकना बंद हो गया है, चेहरे पर मायूसी लटकी हुई है, त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना शुरू हो चुकी है, ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सब बच्चे, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं सब में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार इन लक्षणों का कारण एनीमिया ही हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए जरूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन की जांच और अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेना।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो और आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है। आज हम एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी खून की कमी। ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिलाओं सब में हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, जैसे कि ये हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। लगातार चक्कर आना, सिर दर्द होना, सांस फूलना, कमजोरी होना, थकान होना, चेहरा अब थोड़ा मायूसी सा भर गया है, ऐसे लटका हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन हो गया है, ये खून की कमी के कुछ लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है हीमोग्लोबिन की भी कमी हो गई हो। अब बात करते हैं महिलाओं के विषय में। महिलाओं में भी एनीमिया का खतरा कई कारणों से बढ़ सकता है दोस्तों। खास तौर से मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्त स्राव होना, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। गर्भावस्था में मां के साथ साथ बच्चे के विकास के लिए भी पर्याप्त पोषण होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई आयरन की फोलिक एसिड वाली दवाई को उन्हें सलाह के अनुसार जरूर लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं पुरुषों के बारे में। अक्सर सोचा जाता है कि पुरुष तो मजबूत होते हैं, कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पुरुषों में भी खून की कमी हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर किसी पुरुष को लगातार कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना जैसी समस्याएं हो रही है, इसे केवल काम का तनाव, डिप्रेशन या नींद की कमी मानकर मत छोड़ दीजिएगा। डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषों में एनीमिया के पीछे आयरन की कमी के अलावा कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो और आज आप सुन रहे हैं यहाँ पर यह स्पेशल कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में एनीमिया यानी खून की कमी के कारण। हमने बात की पुरुषों में कैसे खून की कमी हो सकती है, महिलाओं में कैसे हो सकती है और बड़े बूढ़ों में तो खैर हो ही सकती है, बच्चों की भी बात करते हैं। दोस्तों, बच्चों में खून की कमी उनके शारीरिक विकास, सीखने और रोजमर्रा की सक्रियता को प्रभावित कर सकती है। बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। बच्चा बार बार थका हुआ आपको दिखाई देगा। आप बोलेंगे पढ़ ले, खेल ले, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में और खेलने में, वो लेट जाएगा, फोन देखने में मस्त हो जाएगा, उसको रेस्ट करना ज्यादा आरामदायक लगेगा, अच्छा लगेगा। कमजोरी है ये दोस्तों, खून की कमी है दोस्तों ये, उसका विकास अपेक्षा के अनुसार बहुत कम हो रहा है और माता पिता को स्वास्थ्यकर्मी अपने डॉक्टर के पास तुरंत बच्चे को लेकर जाना चाहिए। बच्चों के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, राजमा, लोबिया, पौष्टिक अनाज और उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक जो भी आपके क्षेत्र में, आपके आसपास या आपके घर पर उपलब्ध है। अगर आप घर में नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसको भी शामिल करें, अंडा वगैरह शामिल करें, दूध दही शामिल करें। आयरन की दवा बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के बाद ही दीजिएगा। अपनी मर्जी से बच्चों को कुछ भी खिलाना शुरू मत कर दीजिए। पहले बच्चे की अच्छे से जांच करवा लीजिए, उसके खून की जांच करवाइए, एनीमिया है या किसी और चीज की कमी हो गई है। बच्चों में आजकल स्ट्रेस की, डिप्रेशन की जो शिकायत वो भी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोरी और थकान लोगों को अक्सर सिर्फ उम्र का असर मान लेते हैं, है ना। ऐसा होता है कि उम्र बढ़ गई है, बूढ़े हो गए, तो ये तो उम्र के साथ होता ही है। लेकिन लगातार थकान, सांस फूलना, चक्कर आना कमजोरी के कारण हो सकते हैं, एनीमिया के कारण ये बन सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों में ऐसे लक्षण लगातार अगर बने रहे तो समय पर जांच करवाइए, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, एनीमिया का मतलब हमेशा सिर्फ आयरन की कमी नहीं होता, इसके कारण और भी होते हैं। इसीलिए बिना जांच के खुद से आयरन की गोलियां खाना मत शुरू कर दीजिएगा, ये सही तरीका नहीं है। तो आसान तरीका क्या है, मंत्र क्या है, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना। आपको खाना ऐसा खाना है जो बहुत ही पौष्टिक हो, सिर्फ तला भुना या बाजार का मत खाते रहिए, जो जरूरी है वो खाइए। सही समय पर जांच करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाकर आपको बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर जब डॉक्टर बोले तब दवाइयों को आपको खाना चाहिए। अपने भोजन में दालों का इस्तेमाल कीजिए, चने का इस्तेमाल कीजिए, राजमा, लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार या बाजारों का भोजन कम कर दीजिए। भोजन में विटामिन सी से भरपूर मात्राएं लीजिए, जैसे कि आंवला होता है, अमरूद होता है, नींबू होता है, इनको आप खाइए। आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है ये विटामिन सी, इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, कमजोरी को हमेशा सामान्य मत समझिए। जरूरत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या अपने प्राइवेट डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करवाइए, ये बहुत मददगार रहेगी आपके लिए। खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती दोस्तों, लेकिन सही समय पर पहचान होना और सही समय पर सही तरीके से इलाज हो जाए तो इससे निपटना बहुत आसान है।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हमने एनीमिया के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यहाँ पर बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब में एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इस समस्या को छोटा मत समझिए। लगातार चक्कर आना, याददाश्त का कमजोर होते रहना, सिर्फ अपनी मर्जी से आयरन की गोलियां मत खाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक भोजन लेना है, सबसे जरूरी अपने डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए, जब डॉक्टर बोले वो खाइए, वो दवाइयां बोले तो दवाइयां खाइए, वो बोले कि अच्छा खाना पीना आपको लेना है तो पौष्टिक भोजन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती, लेकिन समय पर इसको समझना, पहचानना और इसको निपटाना बहुत जरूरी है। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं, अपने परिवार में सिर्फ खाना भर नहीं, पोषण भी देखेंगे। सिर्फ चटपटी चीजें नहीं खानी बनानी है, अच्छी चीजें भी बनानी खानी है। पार्टी का भी दिन रख लीजिए, लेकिन रोजमर्रा में आपको अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें वगैरह खाइए। बच्चे आजकल बहुत जिद करते हैं बाहर का खाना, उनको मोमोज खाने हैं, बर्गर, चाउमीन और ना जाने क्या क्या खाना होता है ना, चिप्स, पैकेट वाली चीजें खानी होती है। पैकेट वाली चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बच्चों को और बुजुर्गों को, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी चीजें जो पैकेट बंद आती है बाजारों में उपलब्ध होती है, कोशिश करें किसी खास ओकेजन पर बच्चों को पार्टी के लिए किसी एक दिन दे दीजिए। रोजमर्रा में आपके बच्चे में लगातार खून की कमी हो सकती है अगर आप अच्छा खाना उनको नहीं देते हैं। और बच्चों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाजारों की चीजों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। पैकेट बंद चिप्स मत खाइए, पैकेट बंद चीजें, ज्यादा चटपटी चीजें मत खाइए। अपने घर में चिप्स बनवा लीजिए अपनी मम्मी से, अपने घर में अच्छी चाउमीन भी बनवा सकते हैं। देखिए बाजारों में क्या चीज किस तरह की आ रही है नहीं पता, इसलिए घर पर चीज बनवाइए, खाइए और कोशिश कीजिए दालें, प्रोटीन युक्त भोजन, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, अच्छी रोटी वगैरह खाना, इनको शामिल कीजिए। खून की कमी आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो या पुरुष, सभी के जीवन में जरूरी है इसको पहचानना और समय पर इसको समाप्त कर देना। और याद रखिए दोस्तों, कमजोरी को सिर्फ थकान कहकर नजरअंदाज आज के बाद मत कीजिएगा। बीमारी का इंतजार नहीं करना है, समय पर जांच करानी है। स्वस्थ शरीर, मजबूत परिवार, स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारे अपने खुद के शरीर से और स्वास्थ्य से होती है। मैं हूं आपका दोस्त वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझकर कि ऐसा तो होता ही है ये समझकर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खान पान से होती है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक,

मक्खा और गुड़ ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें। यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते। और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी, लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं, अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपका जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। बातें करेंगे विश्व शिक्षक दिवस के बारे में। विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों, उनके योगदान और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए समर्पित है। आज आप चाहें तो अपने शिक्षक को अभी भी विश्व शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका अपना बेंदाज सारचे पंकज। बातें आगे करेंगे विश्व शिक्षक दिवस के बारे में। ये दिन शिक्षकों की अहमियत को पहचानता है कि शिक्षक सिर्फ जानकारी नहीं देते बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं और उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। ये दिन इन बातों पर भी जोर देता है, जैसे शिक्षकों के अधिकार और जिम्मेदारियां। साल 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा शिक्षकों की स्थिति पर की गई सिफारिशों को याद करना। शिक्षा की गुणवत्ता, ये दूसरा पॉइंट है। दुनिया भर में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और सम्मान मिले। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, भविष्य की पीढ़ी का निर्माण। शिक्षक कैसे समाज को आकार देते हैं, इस बात पर प्रकाश डालना। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं विश्व शिक्षक दिवस को लेकर। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने की थी। 5 अक्टूबर की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1966 में पेरिस में एक विशेष अंतर सरकारी सम्मेलन हुआ था जिसमें शिक्षकों की स्थिति से जुड़े यूनेस्को और आईएलओ सिफारिश को अपनाया गया था। ये शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और कार्य परिस्थितियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक दस्तावेज है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

अपना आपा खो पैना है, रब नू सिद्धे हो पैना है। चुप, जे तू रोई मैं रो पैना है।

0: ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1: देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और बातें चल रही हैं विश्व शिक्षक दिवस को लेकर। भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों दिनों का उद्देश्य शिक्षकों को सम्मान देना है, लेकिन इनकी तारीखें अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है। विश्व शिक्षक दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर इस बात को स्वीकार करता है कि शिक्षकों के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। सुनते रहिए यूं ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, आपके अपने बिंदास सारशे पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। चलिए अभी करते हैं हम एक अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, जो बुरे वक्त में भी काम करते हैं अच्छा वक्त उन्हीं का आता है। सीधा और सिंपल सा मतलब है, आप टाइम के अकॉर्डिंग बदलेंगे नहीं, आपका टाइम पर जो काम होना है उसे आप अपना टाइम पर ही करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि अगर आज आप टेंशन में हैं तो आप अपना काम छोड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये सही है। अपना काम हमेशा पूरा रखिए और उसे सही से कंप्लीट कीजिए। किसी भी बात का बहाना मत ढूंढिए कि मेरी तबीयत खराब थी, या मेरे सर में दर्द हो रहा था, या मेरे हाथ में दर्द था, या मैं देख नहीं पा रहा था। और भी तरह तरह के रीजन होते हैं लोगों के पास काम से बचने के लिए। अपने काम को जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो अक्सर बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, और वो बहाना किसी भी तरीके का हो सकता है, इलॉजिकल हो सकता है। और चलिए मान लीजिए आप बहाना भी नहीं बना रहे हैं, मगर आपका काम तो आपको ही करना है, फिर चाहे वो अब करें या बाद में, तो फिर शुरू में ही क्यों ना कर लिया जाए। सो इसलिए अपने काम को समय पर करें, उससे काम चोरी ना करें। बाकी ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। सुनते रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और एकदम लाइव आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। और मैं अकेले ही यहाँ पर आपसे बातें नहीं करता, आपके जो मुझ पर मैसेजेस आते रहते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर, उन मैसेजेस को भी मैं पढ़ता हूँ। वैसे फिलहाल मुझे मैसेज किया हुआ है साहिल ने हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, जो लिखते हैं कि सर मुझे रोका सॉन्ग सुनना है आरनेत का। तो चलिए साहिल के रिक्वेस्ट को हम पूरा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे भी हम कहना चाहेंगे अगर आप भी किसी ट्रैक की रिक्वेस्ट हमसे करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जा सकते हैं और वहां पर इनबॉक्स में अपने रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। बाकी साहिल आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज। अच्छा, ये कई बार देखा गया है सड़कों पर, जब भी लोग कार से जा रहे होते हैं या बस से जा रहे होते हैं तो कुछ भी वो खा रहे होते हैं ना, बिस्किट हुआ, नमकीन हुई, तो उनके रैपर तुरंत अपनी कार के शीशों से बाहर फेंकते हैं, या बस से सफर कर रहे होते हैं तो बस के शीशे से बाहर फेंकते हैं, एंड कुछ लोग तो पी करते हैं। ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो दूसरे को परेशान कर देती है। कैसे परेशान करती है मैं बताता हूँ आपको, और आप भी बराबर सोचते रहिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप बस से जा रहे होते हैं या कार से जा रहे होते हैं और आपने कुछ खाया वहाँ पर, बिस्किट ही खाया फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तुरंत आप रेफर बाहर फेंक देते हैं। वो रेफर जाकर कोई, मान लीजिए आपके पीछे साइकिल से आ रहा है या बाइक से आ रहा है, तो वो तुरंत उसके मुंह पर जाकर लग सकता है, एंड तुरंत उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए तो ब्लैंक हो जाएगा ना, वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तब तक वो पन्नी हटेगी नहीं या रेफर हटेगा नहीं, तब तक तो ऐसा होगा ही। और कुछ लोग अब जो पीक कर देते हैं, पीक करते हुए भी ऐसा होता है, आप तुरंत बस के बाहर या कार के बाहर पीक करते हैं, वो उड़ता उड़ता किसी दूसरे के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए वो कितना गंदा लगता है कि दूसरे का पीक आपके ऊपर आकर गिर गया। आप खुद को उनकी जगह रख के सोचिए एक बार, जो आपके पीछे चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा देखभाल कर ये क्या कीजिए। इनफैक्ट कूड़ा कचरा तो फेंकना ही नहीं चाहिए, चलती हुई सड़क पर तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, धीरे धीरे ही सही सड़कें भी गंदी रहनी शुरू हो जाती हैं, वहां पर भी रैफर्स ही बिखरे रहते हैं। तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये अपने नेचर में कुछ अच्छी आदतों में जोड़ना चाहिए कि कहीं पर भी अननेसेसरी पीक ना करें, कहीं पर भी अननेसेसरी कूड़ा ना फेंकें, ठीक है। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, आप तक इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, सो मैंने बात की। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे क्या मैंने कहा है और इसको मानेंगे भी। फिलहाल बातें यूं ही चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जय हिंद। ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंता सारचे पंकज, जो एकदम लाइव आपसे बातें कर रहा है और पूरी एनर्जी के साथ यार मैं यहां पर होता हूं अपने शो में, फुल एनर्जी के साथ आपसे बातें करता हूं और जो भी बातें आपके साथ साझा करता हूं वो कोशिश करता हूं कि आप अच्छे से सुने और अच्छे से समझें। फिलहाल अभी हमारे एक लिसनर हैं जिन्होंने अभी हमें अपनी फरमाइश, अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है। ये कह रहे हैं कि सर मुझे सॉन्ग सुनना है कुरी का, गाने का नाम है तेरी गलियों में, और इन्होंने अपना नाम बताया है सुबोध। तो चलिए जी सुबोध, आपको निराश नहीं करते हैं और प्ले करते हैं।

0: ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ? ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਗੀਤ MP3।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
2: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देरा।

0: দুন কল করে 9760920865।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, और आज मैं मेरे मेरठ वासियों के लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो बॉस, अगर आप भी अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए एक परफेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं दूर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लेकर आया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो, और वो भी सीधे आपके अपने शहर मेरठ में। जी हाँ, मार्क द डेट, इसी संडे 11 अक्टूबर को। जगह नोट कर लीजिए, होटल हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या खास मिलेगा, तो जी मैं आपको ये बता दूं, यहाँ आपको एक ही छत के नीचे यानी कि इस एक्सपो में नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैचीधाम, तेहरी, कसोली, गोवा और यहाँ तक कि अंडमान जैसी बेहतरीन लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के सुपर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, ये शानदार डील्स शुरू हो रही हैं बस 12 लाख रुपए से। तो है ना एकदम पैसा वसूल डील, तो देर किस बात की, अपनी प्रॉपर्टी बुक करने का ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9999126127 पर। नंबर अगर नहीं लिख पाए हैं तो दोबारा बता देता हूँ 9999126127। तो संडे को मिलते हैं BW प्रॉपर्टी एक्सपो में सिर्फ होटल हार्मनी इन पर। तब तक सुनते रहिए आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को बताया, लेकिन जिनको नहीं बताया उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए, फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस, बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो, आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान, स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
2: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल।